नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः।

नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

ओम श्री साय साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साय सकल संशय हराय

मयूर मुकुट धर मुरली मनोहर साईं श्यामा नाम है। हे शिव शंकर उमा महेश्वर साईं शंभो नाम है। हे शिव शंकर उमा महेश्वर साईं शंभो नाम है। हे परमेश्वर

परमेश्वर साईं शंभो नाम है। हे परमेश्वर परतिपुरीश्वर तू ही मेरा ध्यान है। हे परमेश्वर।